0: हैं लाइका गोल्ड। टीवी एंड सी फाइव प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर। इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम,
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट्स।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका Radio.
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: Classic Nagme. Aapke apne Laika Gold par.

0: गोल्ड। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
1: Are we there yet?
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
1: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
1: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
1: Since I decided I want a stress-free holiday.
3: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
4: T's and C's apply.
0: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
5: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन कोय। मने सुत होवे मन बुद्ध, मने सगल पवन की शुद्ध। मने मोह चोटा ना खाए, मने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मने मार्ग ठाक ना पाए, मने पत्स्यों प्रगट जाए। मने मग ना चले पंथ, मने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले और के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जा।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख लख गेड़ा आखियें, एक नाम जगदीश।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती छित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: Are we there yet?
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
3: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
0: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
7: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner, like रेडियो
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
9: एट ब्रेस्ट कैंसर नाउ वी नो चेकिंग योर ब्रेस्ट कैन फील डॉन्टिंग But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
10: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Yeh Yavo. Only Leica Gold.

0: This is the Lycra Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: Travel Hub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
0: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ. हमारे राम.
3: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट.
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक रेडियो.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24 hour line.
5: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
6: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
5: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
9: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.

0: com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
3: आपके सामने एक रेड बटन है,
4: दबा दिया,
3: नहीं दबाना था.
5: The madness is back. धमाल 4. गुलाबी साड़ी में तू लग रहा. Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar. गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी. Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. sonatours.co.uk. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
10: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime. On the Leica Radio Network.
11: Gold Breakfast with Kajal.

गुड मॉर्निंग। स्वागत है, खुशामदीद जी आया नू, आपको बुला रहे हैं, आपको भाई स्वागत कर रहे हैं संगीत के संसार में, म्यूजिकल वर्ल्ड, और यू कैन से दैट द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट।

0: पर साथ में सूचनाएं समाचार भी हैं, गंभीर विचार भी हैं और बहुत कुछ है बहनों भाइयों आपके इस मनभावन प्रोग्राम मनोरंजन में। आज बुधवार है, वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 8 तारीख है और वक्त हो गया है 10:05 ब्रिटेन में। दुनिया भर में सुना जा रहा भाई आपके यहाँ क्या बजा है, यहाँ तो संगीत बजा है और शायरी बजेगी। अभी शुरुआत शायरी से करते हैं, एक सवाल से करते हैं, लोग हम जन्म के प्यासों से परेशान क्यों हैं, बेवजह खाली गिलासों से परेशान क्यों हैं, एक ही सोच में डूबी है सारी दुनिया, झुग्गियां राजनिवासों से परेशान क्यों हैं, झुग्गियां झोपड़ियां राजमहलों से परेशान क्यों हैं, राजनिवासों से। जाने मन चढ़ती जवानी की हैं ये सौगातें, आप इन कील मुहासों से परेशान क्यों हैं, आपने जिसको खुदा मान के कल तक पूजा, आज उस बुध के दिलासों से परेशान क्यों हैं। घर में चलता है सदा हुक्म इन्हीं का, फिर भी ये बहुरानियां सासों से परेशान क्यों हैं।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
0: लीजिए साहब गीत की शुरुआत करते हैं और ढूंढते हैं जवाब उन सवालों का जो हमने शायरी में पढ़ दिए हैं कि लोग हम जन्म के प्यासों से परेशान क्यों हैं, बेवजह खाली गिलासों से परेशान क्यों हैं। घर में चलता है सदा हुक्म इन्हीं का, फिर भी ये बहुरानियां सासों से परेशान क्यों हैं। परेशानियां छोड़िए और साहब हमारे मनोरंजन प्रोग्राम से जुड़िए।

0: हाँ बहनों भाइयों, ये सुहाना सफर है 3 घंटे का और इसका नाम है मनोरंजन। और साहब, इस 3 घंटे के सफर में काफी कुछ होगा, बहुत अच्छे अच्छे मोड़ आएंगे, स्टॉप्स आएंगे, तो आप हमारे साथ रहेंगे तो एंजॉय करेंगे। तो साहब, पहला मोड़ तो हम पाउंड का रेट बताने वाले हैं, लेकिन याद दिला दें कि दोपहर बाद 1 बजे तक आपको डटे रहना है, अड़े रहना है इस मनोरंजन कार्यक्रम के सफर में। राइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK बता रहे हैं कि इस समय अगर आप भारत पैसे भिजवाएंगे तो साहब क्या रेट पाएंगे, 1 पाउंड के बदले कितने आएंगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इस समय अगर आप पैसे भिजवाएंगे तो 1 पाउंड के बदले आपको मिल जाएंगे 127 रुपए और 10 पैसे। 127.1 इज द रेट। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: तो साहब, वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो वो क्वार्टर फाइनल वाला है भाई, वो तो क्लियर हो गया है। 8 टीमें पहुंच गई हैं वहां और अब सेमीफाइनल के लिए मारामारी शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि कल के मैच में स्विट्जरलैंड ने विजय प्राप्त करके भाई एंट्री कर ली है क्वार्टर फाइनल में। क्वार्टर फाइनल की जो 8 टीमें हैं उनमें मोरक्को, फ्रांस, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की टीमें हैं। अब भाई सेमीफाइनल के लिए जो मारामारी शुरू होगी उनमें बिडन होने वाली है फ्रांस और मोरक्को की, स्पेन वर्सेस बेल्जियम, इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे इसका इंतजार रहेगा और अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। भाई जैसे मुकाबले शुरू होते हैं नतीजों से हम आपको जोड़े रखेंगे, आप जुड़े रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क के साथ। एंड डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका। अब आप कहेंगे रैक लॉ से संपर्क कैसे करें, भाई फोन नंबर आ रहा है ना अभी, ध्यान से सुनिएगा।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Ye hai Leica Gold.

0: लता मंगेशकर और कमल बारूद की आवाजों में वो गीत भाई जिसने रातों रात लक्ष्मी प्यारे को लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। वेल, पारसमणि फिल्म का गीत आपने सुना और सुनवाया किसने?
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a gold.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप में आखिरी वक्त में किए गए गोल की बदौलत मिस्र को 3-2 से हराकर शामिल हो गया है भाई क्वार्टर फाइनल के लिए, अब सेमीफाइनल के लिए भिड़ेगा क्वार्टर फाइनल जो टीमों में। एक समय में अर्जेंटीना मैच में पिछड़ रहा था लेकिन मेसी ने एक गोल कर मैच को 2-2 से बराबर कर लिया और इसके बाद एंजो फर्नांडीज स्टॉपेज टाइम के दूसरे मिनट में हेडर से गोल किया और पूरे स्टेडियम में मौजूद अर्जेंटीना के फैंस खुशी से झूम उठे। भाई ये फुटबॉल में यही हो रहा है, कुछ लोग खुशी से और कुछ लोग गम से दुख से जो है आंसू बहाते नजर आए हैं। पर कुछ और भी खबरें हैं भाई फुटबॉल के अलावा। क्रिकेट की बात करें तो कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड से हार के बाद कहा कि भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब चल रहा है। अमेरिका का दावा कि ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर उसने हमला किया है। ईरान पर ट्रंप का जो बयान आया है सुनिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर पर अपनी प्रतिक्रिया यानी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से ये अब खत्म हो चुका है। उन्होंने नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान प्रेस से कहा कि मैं अब उनसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता, वे घटिया लोग हैं। ट्रंप ने कहा जहां तक मेरा सवाल है ये मामला खत्म हो चुका है, उनसे बात करना वक्त की बर्बादी है, वे झूठ बोलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के वार्ताकारों को लेकर कहा कि वे वास्तव में मानसिक रूप से बीमार हैं, पागल हैं। उनके नेता मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, मेरी नजर में उनसे निपटना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिकी हमले के बाद समझौते के अहम और बुनियादी हिस्से बेअसर हो गए हैं, अनइफेक्टिव हो गए हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग्ची ने अमेरिका के बीच समझौते के एमओयू के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि अमेरिका के हमले, ईरानी तेल की बिक्री पर फिर से लगाई गई पाबंदियां और हिजबुल्ला के साथ लेबनान में इसराइल का जारी संघर्ष युद्ध रोकने के समझौते के अहम और बुनियादी हिस्सों को बेअसर कर चुके हैं। भारत से आने वाली खबरों में, वहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में जिन 3 लोगों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से दूर किया गया है उनमें एक गोपाल राव भी हैं और गोपाल राव मंदिर के दैनिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे दर्शन व्यवस्था और संचालन से जुड़े थे। वो ट्रस्ट के सदस्य नहीं थे पर ट्रस्ट की बैठकों में खास इन्विटेशन पर शामिल होते थे। सोमवार को ही ट्रस्ट की बैठक के बाद फैसला लिया गया कि उन्हें आगे से बैठकों में विशेष आमंत्रित यानी स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट के रूप में भी अब नहीं बुलाया जाएगा। ईरानी सेना ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। चला है बल्कि एक बयान में कहा गया है कि बहरीन में शेख ईसा अड्डे पर स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बयान के मुताबिक यह कार्रवाई साउथ ईरान में फौजी और गैर फौजी इलाकों पर अमेरिकी हमलों और 14 सूत्री एमओयू के उल्लंघन के जवाब में की गई थी। ईरानी फौज का कहना है कि यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया था। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ सिलसिलेवार हमलों में 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। सेंटकॉम ने बताया है कि यह कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में की गई थी। सैनिकों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम कमान और कंट्रोल नेटवर्क, तटीय राडार ठिकानों और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 60 से ज्यादा छोटे IRGC जहाजों को निशाना बनाया है। एक और खबर, राम मंदिर चढ़ावा मामले में वहां 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के 3 आरोपी को हिरासत में लेने के लिए यूपी की पुलिस अयोध्या जेल पहुंची है। इनमें नाम जो शामिल है वो अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे। इन तीनों की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी। अभी सोमवार से इनकी अदालत में सुनवाई भी शुरू हुई थी। अदालत को बताया गया है कि मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए तीनों से पुलिस हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, रायपुर में एक फैक्ट्री में धमाका हुआ, 3 मजदूरों की मौत हुई है। मृतकों में 2 मध्य प्रदेश डिंडोरी जिले के रहने वाले थे जबकि 1 जांजगीर चंपा जिले का है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड वहां पहुंची, आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। विस्फोट की आवाज करीब 0.5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। और ये खबर पाकिस्तान से, शारजाह से कराची जा रहा एक कार्गो हवाई जहाज लापता हो गया है, उसकी तलाश अभी भी जारी है। शारजाह से कराची जा रहे पाकिस्तान के 2 एयरवेज का एक कार्गो हवाई जहाज बोइंग 737 अचानक लापता हो गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से ये खबर आई है कि मंगलवार को पाकिस्तान के समय अनुसार रात 9:18 पर हवाई जहाज के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना मिली थी। इसके बाद कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तुरंत हवाई जहाज को गाइड करना शुरू किया, लेकिन रात 9:21 पर राडार पर विमान तेजी से नीचे उतरता दिखाई दिया और उसकी दिशा अचानक, उसकी डायरेक्शन अचानक बदल गई। इसके कुछ ही देर बाद कराची से लगभग 155 नॉटिकल माइल पश्चिम में, वेस्ट में, विमान से राडार और रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया। लापता हवाई जहाज की तलाश के लिए पाकिस्तानी नेवी, एयरफोर्स और दूसरी एजेंसियां शामिल हो गई हैं। क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में खेले गए 3रे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है। मैच के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के प्रदर्शन को बेहद खराब बताया है। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-0 से आगे हो गया है। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बारिश का शिकार हो गया था। और फीफा वर्ल्ड कप, स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: गम भुलाने के तौर तरीके हैं, पर लोग दारू क्यों पीते हैं समझ नहीं आता। भाई हमारे पास कुछ और तरीके हैं। काय को पीते हो भैया?
5: अरे यार मजबूरी में पीते हैं भाई, ये हमको ये पीने का शौक नहीं है यार, इतनी कड़वी होती है, बड़ी मुश्किल से पीते हैं।

0: मुझे पीने,
1: मुझे पीने का शौक बिल्कुल नहीं है। अरे साहब ये मजबूरी है भाई, समझा करो। ये एक तो मजबूरी, फिर ठेके की दूरी, जो तुम पी के देखो पता लगता है कि कितनी कड़वी कितनी हिम्मत का काम है, वो बहुत बहुत परिश्रम का काम है।
2: ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, जस्ट ऐड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स। लाइका गोल्ड हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
1: साउथ ऑल ट्रैवल याद दिला रहे हैं भाई, अपने उस संदेश को दोहरा रहे हैं जो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि साउथ ऑल ट्रैवल कहते हैं, क्या कहते हैं, कहाँ गए भी वो इनकी कहावत, इनका कहना, साउथ ऑल ट्रैवल दे आर प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट असेंशियल ट्रैवल टू दुबई। कॉल साउथ ऑल ट्रैवल फॉर द मोस्ट competitive Dubai deals on 0208-574-8410. At all protected.
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Ye hai Laika Gold
1: travelhubworld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
3: Travel Hub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
3: Visit travelhubworld.com.
4: Every morning a shopkeeper opens his doors.
5: Lights on, shutters up, staff ready.
4: But today's customers don't start on the high street.
5: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
4: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
5: They walk into your competitors.
4: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: विल नहीं है ये रिस आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
11: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Dutch, look, check. Dutch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: ओम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
1: 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार, अगर ज़माना इजाज़त दे और हालात की परमिशन हो। भाई ये हितेश भाई, ये आप जो जोक भेज रहे हैं ये हंसाने के लिए भेज रहे हैं या हमें पिटवाने के लिए भेज रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए ना,
0: जोक भेजा और कब? आज नहीं, कई दिनों से भेज रहे हैं एक उसी जोक को। कहते ये तो आपको प्रोग्राम में शामिल करना ही पड़ेगा। भाई हिंदुस्तान से ये जोक आया है, हितेश पटेल ने भिजवाया है। लिखते के पत्नी पति से क्या कहती है,
13: हे जी वो कौन सी चीज है जो आप देख तो सकते हैं लेकिन घर पे नहीं ला सकते?
0: क्या कहा, चीज?
13: हाँ, क्या है ऐसी चीज जिसे आप दूर से देख सकते हैं लेकिन घर पे नहीं ला सकते हैं?
0: पति ने सोच समझ के जवाब दिया, ऐसी चीज तो हमारी पड़ोसन है, देख तो सकते हैं घर से नहीं ला सकते हैं। बड़े बड़ों ने कहा है लव दाई नेबर, पड़ोसन से प्यार करो बट डोंट गेट कॉट।

आइए एक गीत आपकी और हमारी दोस्ती के नाम हो जाए। मोहम्मद रफी और मुकेश जी के स्वर जब जब मिले तो भाई गीतों के पुष्प कुछ इस तरह खिले।

0: ये गीत हमें ले आया है 11 बजे की खबरों के नजदीक। और बहनों भाइयों, खबरों में प्रमुख रूप से जो समाचार छाया हुआ है वो है भाई डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जो कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो टेम्परेरी सीज फायर का समझौता था वो अब खत्म समझो, क्योंकि ईरान के साथ हम तो चाहते हैं कि भाई कुछ शांति हो इलाके में, लेकिन ईरान के नेताओं से बातचीत करना अब वक्त की बर्बादी लगता है। Let's find out more.
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. Donald Trump says he thinks the temporary US

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे भाग में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो है और आप सुन रहे हैं रवि शर्मा के साथ ये कार्यक्रम मनोरंजन, जिसमें अब आ रहा है पड़ाव चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के चिंतन के लिए हमें आलेख भिजवा रहे हैं पंडित शारदा मोहन जी। पंडित शारदा मोहन हाउंसलो टेम्पल से कहते हैं, आजकल भाई श्रद्धालुओं की भीड़ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ नेगेटिव खबरें भी सुनने को मिलती हैं धर्म से जुड़ी हुई, खासकर अयोध्या के वही मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की खबरें आई तो उनसे हमें बहुत दुख पहुंचा। लेकिन कहते रवि जी, हमारे यहाँ आइए और आकर के महसूस कीजिए कि दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को कैसा अनुभव होता है यहाँ पर। बहनों भाइयों, कलयुग का दौर है, कुछ ऐसी नेगेटिव खबरें भी आती हैं। शारदा मोहन जी कहते हैं, हमारे एक दोस्त परम मित्र अंग्रेज हैं, लेकिन बड़े श्रद्धालु हैं, मंदिरों में उनकी बड़ी आस्था है, भजन गाते हैं, गिटार बजाते हैं, नाम है उनका रिचर्ड। रिचर्ड भाई, पहले तो हम आपकी सेहत याबी की कामना करते हैं, स्वस्थ हो जाइए, बहुत कमजोर हो गए हैं, बीमार रहने लगे हैं। आपने कई बरस भारत में गुजारे और कई तीर्थों

पर जाकर के दर्शन किए, भजन गाए, आप टूटी फूटी हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी पढ़ भी लेते हैं। अब रिचर्ड एक बड़े मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे थे, लंबी लाइन थी, लेकिन उन दोनों कहते हैं मैं जवान था, तंदुरुस्त था, तो इंतजार कर सकता था, और वो इंतजार मुझे एक तपस्या की तरह लग रहा था। भाई भगवान के दर्शन करने, इसलिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा, यही तो तपस्या कहलाता है, ये दुख ये कष्ट। पर तभी एक मंदिर का अधिकारी आया और मुझे लाइन से निकाल के एक तरफ ले गया और कहने लगा, देखिए यहाँ आपको घंटों लग जाएंगे, लंबी लाइन है, अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं तो मैं करवा सकता हूँ। रिचर्ड भाई ने पूछा, कैसे करवाएंगे आप? उन्होंने कहा कि आप 1100 रुपये दीजिएगा, मैं आपको पिछले दरवाजे से ले जाकर के दर्शन करवा दूंगा। 1100 रुपए बस, कहते ज्यादा देना चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको साइड के डोर से पीछे ले जाऊंगा और वहां से फिर आपको मंदिर में एंट्री करा के और भगवान के दर्शन करवा दूंगा, वरना यहां तो घंटों खड़े रहेंगे आप। रिचर्ड ने कहा, ऐसा करो, मैं तुम्हें 1100 की बजाय 2100, 3100, 5100 रुपए दूंगा, भगवान से कहो कि मुझे यहीं आके मिल ले। मजाक कर रहे हैं आप? कहते नहीं नहीं सच कह रहा हूं, 5100 रुपए दूंगा, जाओ भगवान से कह दो बाहर आकर मुझसे मिले। वो आदमी पहले तो थोड़ा सा हंसा, फिर उसके बाद गुस्सा करके कहने लगा, क्या बकवास करते हैं आप, इस तरह का मजाक अच्छा नहीं, मजाक कर रहे हैं आप। रिचर्ड ने कहा, मजाक तो आप कर रहे हैं, भगवान को बिकाऊ बना रखा है आपने, मुझे लाइन में खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग खड़े हैं, इन श्रद्धालुओं के साथ मैं भी अपनी श्रद्धा लेकर लाइन में लगा हूं, मुझे रिश्वत देकर दर्शन नहीं करने हैं। और यह भी बता दूं, आप भगवान के दर्शन नहीं करा सकते।

0: आज का चिंतन, आज का विचार, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आंखें खोलने वाला विचार। भाई हम कलयुग से गुजर रहे हैं, हालांकि सभी जगह ऐसा नहीं है, फिर कहीं कहीं ऐसा अनुभव हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाता है। आज के चिंतन में आपने सुना आलेख, पंडित शारदा मोहन जी ने भिजवाया और निमंत्रण भी दिया कि हमारे यहाँ आकर के देखिए, सचमुच आपको अनुभूति होगी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति की। थैंक यू शारदा मोहन जी, आपके चिंतन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रिचर्ड भाई का अनुभव गलत नहीं है। रिचर्ड, आप जल्दी स्वस्थ हो और मुलाकात करने आए। कभी कभी आप रेडियो स्टेशन पर आया करते थे, मंदिर में मिलते थे, बहुत अच्छा लगता था। चिंतन के विषय में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। नरेंद्र पांचाल लिखते हैं, गुड मॉर्निंग रवि भाई, आई लाइक इट, थैंक यू। नैना शाह कहती हैं, भगवान के दर्शन नहीं बल्कि भगवान को मिलने जाएं। हाँ, खाली दर्शन करने नहीं, अपने भीतर उतारने के लिए जाएं मंदिर में। वत्सला कहती है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था रवि जी। वत्सला जी, हुआ होगा, कहते वैसे तो हमने भगवान राम के दर्शन किए होली के दिन, बड़ा पावन दिन था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन द्वारकाधीश जी के मंदिर में एक बार ऐसा हुआ था, जब किसी ने आके कहा कि आपको जल्दी दर्शन करवा देंगे, हमने कहा नहीं, हमें जल्दी वाले दर्शन करप्शन के माध्यम से नहीं चाहिए, हमें सत्य और तप के माध्यम से भगवान को महसूस करना है, देखना है। ये हमारी धारणा है, ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं ऐसी घटनाओं के माध्यम से। उल्लास टोरंटो से जसू भाई कहते हैं, आज का चिंतन बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू जसू जी, गाना भी बहुत अच्छा था, थैंक यू। वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा। किरण, आपका संदेश मिला, थैंक यू वेरी मच, आप रेगुलर सुन रही हैं आजकल, अच्छा लगा। किरण जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सुनीता शर्मा कहती हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग। हंसा बोरा, थैंक यू, आपको विचार बहुत पसंद आया। स्लो में पम्मी सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। जगदीश जी बुशी में, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू आज ब्रॉट इन टू द चिंतन, थैंक यू जगदीश जी। अरुणा और भूपेंद्र पटेल, निर्मला राजीव पटेल कहते हैं, चिंतन वाज सुपर सुपर सुपर से भी ऊपर डुपर, आई लाइक इट, थैंक यू राजीव। नीला चौधरी जी, जैस्मीन, राजेंद्र, राज, विजय, हमारे मॉरिशस वाले, हिना सहर और राजकुमार साहब, सुबह की प्यार भरी रामनामा आप तो कभी पहुंचे, भरत गंगाराम और हमारे हितेश पटेल, अनिल सोनी वियाना में, हरीश रोडा, हीतल सोलंकी। भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा और इसी तरह से उत्साह बढ़ाते रहेगा। चिंतन के विषय में बता दूं कि हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन Chintan.
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और लीजिए साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम रेट बता रहे हैं आपको। अगर भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो उनकी ऑफर्स का फायदा उठाइए। वो कहते हैं कि आज का पहले तो रेट सुन लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके, टुडे दे आर गिविंग फॉर वन पाउंड हाउ मच, 127.1 रुपीज, 127 रुपए और 10 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप, इनके माध्यम से भिजवा सकते हैं। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: पर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो पहला चरण है वो कंप्लीट हो गया है और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीमों का ऐलान हो चुका है। अब भाई सेमीफाइनल के लिए मारामारी शुरू होगी और आपको बता दें कि मैच के आंकड़ों से नतीजों से हम आपको जोड़े रखेंगे। आपको ये भी बता दें कि कल का मैच जो समाप्त हुआ वो गया स्विट्जरलैंड के पक्ष में और भाई उसमें भी काफ़ी संघर्ष हुआ और अब जो है सेमीफाइनल के मुकाबलों के साथ हम आपको जोड़े रखेंगे। और हमारे स्पॉन्सर्स तो भूलिएगा नहीं, आप सुनते भी रहिएगा, देखते भी रहिएगा, जानते भी रहिएगा। और ये भी जान लीजिए कि हमारे जो स्पॉन्सर हैं दे कैन गिव यू 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस इफ यू कॉल देम एंड मेंशन लाइका। कौन है? रैक लॉ वाले, और उनका नंबर नोट कर लीजिए, आ रहा है अभी।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Leica Gold.

0: ये है लाइका गोल्ड। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: बैक टू बैक संगीत सुनवाने के बाद भाई अब आ रहा है ये गीत रफी साहब की आवाज में। दिन तो गुजर जाता है पर सबसे बड़ा मुश्किल काम जब होती है शाम। दिल खो जाता है, कुछ हो जाता है,

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a Gold.
0: Like a Extra podcast update.
4: लाइक एक्स्ट्रा बाय हमारा नया एपिसोड अब उपलब्ध है. एपिसोड नंबर 23, राइज इन वुमेन्स क्रिकेट, होस्टेड बाय दीप राजा, देखना मत भूलिएगा. और हाँ भैया, महिलाओं की क्रिकेट की लोकप्रियता भाई अब बढ़ रही है, मैदान भरे नजर आते हैं. ऐसे में कई सवाल उठते हैं और वो पूछे गए हैं हमारे इस कार्यक्रम में. वी डिस्कस हाउ करंट क्रिकेटर्स आर चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप एंड इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन. और भाई कुछ खेल ऐसे थे ना जैसे जो वो सिर्फ पुरुषों के समझे जाते थे, अब तो फुटबॉल हो या क्रिकेट, महिलाएं आगे बढ़ के खेल रही हैं. और BCCI ने तो महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को उतने ही पैसे देने शुरू कर दिए जितने वो पुरुष खिलाड़ियों को देते हैं. अच्छी मोटी रकम मिलती है, इसलिए काफ़ी खिलाड़ी जो है वो आ रही हैं मैदान में. और इनसे जुड़े बहुत सारे सवाल दीप राजा पूछ रहे हैं. और भाई आप जानना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा. लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
0: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
5: ये है लाइक गोल्ड.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट travelhubworld.com.
8: London, the wait is over.
9: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
8: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
9: From Raj Kachori to Chole Bhature, Pao Bhaji,
8: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
9: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
8: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London.
10: Haldiram's.
11: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
12: Packed for the trip? Gifts? Passport?
13: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
12: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
13: Simzy?
12: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
14: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
15: T's and C's apply.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
17: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
18: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स.
17: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
19: sonatours.co.uk. 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027. बुक बिफोर द एंड ऑफ जुलाई एंड गेट 600 ऑफ. कॉल सोनाटूर्स ऑन 0208-951-0111.
0: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Gold.
3: लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे.
7: The sun is out and so are the summer hits on Laika Gold.
10: पीने वालों को

0: सुरेश वाडकर, नितिन मुकेश, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में ये रंगीन गीत आपने सुना। जरूर भाई, होली के त्योहार को पिक्चराइज किया होगा इस गीत के साथ।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: रेट क्या देंगे ये तो बताइए। सुन लीजिए भाई, रेट ये दे रहे हैं, एक पाउंड के बदले इन इंडियन करेंसी 127.6 रुपीज, पाकिस्तानी 372.13, श्रीलंकन 447.94, बांग्लादेशी टका 164.9 एंड अफगानी 85.48।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And the gold is trading at the rate of 97.75 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets.
4: So, aao paas baithe pal do pal.
5: Aaj nahi kal.
4: Kyun?
5: Aaj nahi.

0: और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम।
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट।
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो।
2: काजल्स कुटियर फॉर एवरी सेलिब्रेशन एवरी मोमेंट एंड एवरी अनफॉरगेटेबल एंट्रेंस।
3: डिस्कवर काजल्स कुटियर साउथहॉल द ग्रैंड न्यू डेस्टिनेशन फॉर एलिगेंस at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
3: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
3: Visit kajalscouture.co.uk.
4: आपके सामने एक red button है. नहीं दबाना था।
5: The Madness is back, Dhamal 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहे।
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4, directed by Indra Kumar.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
5: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता?
5: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
9: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
5: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
9: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
5: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
10: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02083444 24-hour line.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll Protected.
0: Manoranjan with Ravi Sharma.

हाय हाय या हाय हाय कह कर लगा रखी है। ये कहाँ से आ गए मिडल सेक्स वाले है? भाई आज सलमा का जन्मदिन है, ये जो बनने ना दे मेरी सलमा को मेरी दुल्हन।

0: हमारी बात का जवाब दो ना। हाँ ये सलमा को दुल्हन क्यों नहीं बनने देते क्या?
1: भाई मैंने कहा कि सलमा का जन्मदिन है, ये सलमा कौन है? अगर इनका हम असली नाम बताएं तो असली नाम है इनका हरनीत कौर।
2: इसके बाल तो देखो।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

0: खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे ये दोनों और इस दुनिया से नहीं डरेंगे ये दोनों, पर एक दूसरे से ये डरेंगे दोनों, बता दूं। बैक टू बैक संगीत में दो गीत हमने आपको परोसे, दोनों एक ही साल रिलीज होने वाली फिल्मों से। भाई एक फिल्म थी, कौन सी थी, जो भी थी, शायद एक का नाम था रफू चक्कर और दूसरी फिल्म खेल खेल में 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म है। और भाई आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई को बहुत सारे लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कल महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन था, भारतीय क्रिकेट कप्तान, बड़े कूल कैप्टन कहलाने वाले भाई, उनका जन्मदिन था। केटला बरसना थी गया दीकरा, नन ऑफ माई बिजनेस, क्यों नाराज करें हम भाई। हाँ, और आज जन्मदिन मनाने वालों में एक और क्रिकेटर का नाम है सौरव गांगुली, ये 1972 में जन्मे थे और साहब ये भी बड़े कामयाब कप्तान रहे, काफ़ी मैच भारत की टीम ने इनकी क्या कहे कप्तानी में जीते। और सौरव गांगुली आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हिम। और भाई कुछ राजनेता भी आज ही के दिन जन्मे थे, YS राजशेखर रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के या कहाँ के थे भाई, वो तेलंगाना के थे या मतलब वो पहले एक ही था। YS राजशेखर रेड्डी का जन्मदिन भी आज ही पड़ता है, वो 2009 में उनका निधन हो चुका है। और एक और बड़े कामयाब मुख्यमंत्री बंगाल के ज्योतिर्बसु, बड़े सुलझे हुए नेता थे भाई, उनका भी जन्मदिन आज ही के दिन पड़ता है। और कुछ फिल्मी हस्तियां भी तो आज अपना जन्मदिन मना रही हैं, सोचिए दो गीत हमने आपको सुनवाए। हरनीत कौर का जन्मदिन पड़ता है आज, कौन है ये हरनीत कौर?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK याद दिला रहे हैं भाई, पैसे भिजवाना चाहे तो रेट अच्छा चल रहा है। इस समय का रेट हम बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK भारत पैसे भिजवाने वालों को दे रहे हैं 1 पाउंड के बदले 127.1 रुपीज मैक्सिमम, 127 रुपये और 10 पैसे। यू कैन सेंड योर मनी वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग SBI योनो मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
0: साफो ट्रेवल at all protected.
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
5: London, the wait is over.
6: Haldiram's is now open at Leicester Square, Central London.
5: The authentic taste of India has finally arrived right in the heart of London.
6: From Raj Kachori to Chole Bature, Pao Bhaji,
5: Parathas, sweets and so much more. Your favourite Indian flavours are now here.
6: Come with family, come with friends and enjoy the taste, the vibe and the celebration.
5: Haldiram's, now open at Leicester Square, Central London. Haldiram's.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
8: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
9: एट ब्रेस्ट कैंसर नाउ वी नो चेकिंग योर ब्रेस्ट कैन फील डॉन्टिंग, बट इट्स एज सिंपल एज TLC, टच लुक check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
10: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
11: Four beers, please, garçon!
10: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
12: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagoon.com.
13: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
14: और बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है शकील बदायूनी। 1916 में जन्मे थे, 1970 में इस दुनिया से विदा हो गए 53 साल की उम्र में। लेकिन साहब इतने गीत लिख गए और ऐसे प्यारे प्यारे और न्यारे न्यारे गीत लिखे कि जब भी सुनते हैं दिल झूम उठता है। ऐसे ऐसे गीत ये सुनिए।

0: शमशाद बेगम, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें शामिल थी इस गीत में, और ये गीत लिखा था, कहते हैं गीतकार आजम शकील बदायूनी ने। भाई अपने गीतकार जीवन में उन्होंने 90 के करीब फिल्मों के लिए गाने लिखे और ऐसे ऐसे अफसाने लिखे, भाई गजलें लिखी, रोमांटिक गीत लिखे और अनेक गीत इनके जो है बड़े मशहूर हो गए। आपको याद होगा फिल्म बैजू बावरा, जिसका गीत हम आपको अभी सुनवा रहे थे। इसके अलावा दुलारी, शबाब, गंगा जमुना, मेरे महबूब और बहुत सारी फिल्में जहाँ इन्होंने नौशाद साहब के साथ की, उनके गीत लिखे। रवि साहब के साथ इनकी बड़ी अच्छी जोड़ी थी। और गज़लें में कहते हैं कि बेगम अख्तर से लेके पंकज उधास तक गज़लकारों ने, गायक कलाकारों ने इनकी गज़लें गाईं। और एक गीत हमने कल सुनवाया था, अफसाना लिख रही हूँ, वो उमा देवी की आवाज़ में था। और जानते हैं आप ये उमा देवी कौन थी? उमा देवी थी टुन टुन नाम से, वो जो एक खाते पीते घर की महिला फिल्मों में अपनी अदाओं से लोगों को हंसाती थी, लेकिन उनकी मीठी आवाज़ ऐसी थी कि वो उसमें गाती थी उमा देवी नाम से। तो वो गीत भी शकील बदायूनी साहब ने लिखा था। और अब ये जो गीत आपने सुना शकील जी की कलम से निकला था, और कई गीत आपको सुनने को मिलेंगे क्योंकि ही इज़ द आर्टिस्ट ऑफ द वीक टुडे। अगला गीत कौन सा है?
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: लोग लिख के भेज रहे हैं कि हरनीत कौर कौन है आपने पूछा, हम सब जानते हैं। शर्मा जी अपने आप को बहुत क्लेवर मत समझो। अरे क्लेवर तो कहाँ, हम तो यार बुद्धू हैं। अब देखिए ना, हमने जस्सू भाई के लिए गीत लगाया तो संदेश आया, हूँ जस्सू भाई नथी, हूँ तो जस्सू बेन छू। लिखा नहीं था ना जसू बीन आगे। अब फोटो तो भाई की लगाई हुई है आपने अपने मैसेज में, वो जो आपकी तस्वीर है बहुत प्यारे, आई थिंक ही इज़ योर ग्रैंड सन जो भी है, लेकिन भाई भाई की तस्वीर है। और मैंने जसू भाई बोल दिया, जसू बेन छे, जसू बेन क्षमा याचना, ओके क्या कहूँ अब, छोड़ो जी बात को बुलाओ। अगला गीत जसू बेन के नाम लगाओ। थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ संदेश आए हैं, केतकी आपका संदेश मिल गया है और आप कहती हैं रवि भाई वेरी नाइस चिंतन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। केतकी आपका मैसेज आता है इंडिया के फ़ोन नंबर से, इंडिया में है क्या, कब वापस आ रही हैं? वो वहाँ के दूध की बर्फी लाना मत भूलिएगा। मुँह मीठा हो गया आपका नाम लेते हैं, थैंक यू वेरी मच। अब साहब वो एक बात याद आई है, एक समय की बात है, हमने फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर को इंटरव्यू किया, फिर हम उसे बाहर तक छोड़ने जा रहे थे तो उनका फ़ोन बज गया, और फ़ोन बजते उन्होंने फ़ोन लिया तो भाई हम लिफ्ट में चढ़ रहे थे, ऊपर स्टूडियोज थे, नीचे उतरने के लिए मैं उन्हें बाय बाय करने आ रहा था, तो लिफ्ट में थोड़ी देर जितनी देर रहे वो बातचीत उनकी बहुत करीब होने के कारण मुझे सुनाई पड़ रही थी, तो भाई वो ऋषि कपूर यानी चिंटू भाई पर डांट पड़ रही थी, पसीने छूट रहे थे उनके। किसका फोन था? हरनीत कौर का फोन था।

गीतों से भाई रूठों को मना लिया जाता है, बातों से मना लिया जाता है, प्रॉमिस किए जाते हैं। भाई ऋषि कपूर की पत्नी अब तो उनकी बेवा कहीं, और रणबीर कपूर की पूजनीय माता श्री आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। नीतू जी, नीतू सिंह कपूर वही हैं हरनीत कौर। बचपन में छोटी उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। बेबी सोनिया नाम से वो फिल्मों में अपियर हुई हरनीत कौर। नीतू सिंह और फिर नीतू कपूर आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू मैडम।

0: मत जाना भाई, ना तो खाना पीना सोना कुछ नहीं मिलेगा, वो तो नाच गाने में लगी रहेगी। ये हमारे राजेंद्र राज जी लिखते हैं, क्या लिखा है कि डॉक्टर ने पेशेंट को देख के कहा, पेशेंट कहाँ था भाई, खाते पीते घर का था, अच्छा खासा, बिल्कुल एकदम क्या कहें, कौन भाई, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि डॉक्टर उसको देख के कहता है, हाँ आपकी तकलीफ, कहता है ये लो कुछ गोलियाँ। कहने लगा साहब कैसे खानी है, डॉक्टर कहता है खानी नहीं है, आपको क्या करना है, इन गोलियों को ज़मीन पर बखेरना है फिर उठाना है, बखेरना है फिर उठाना है, फिर तो ऐसे बस ये खाने वाली गोलियां नहीं है ये तो। अच्छा, और वो बहुत अच्छा खासा खाता पीता आदमी भाई, खूब मोटा ताज़ा, कहता है डॉक्टर साहब देखिए ये जो बीमारी है ना, ये हमारे सारे खानदान में, हमारे खून में, हमारे खून में ये मोटापा दौड़ता है। डॉक्टर कहता है माफ़ करना भाई, तुम्हारे खानदान में कोई नहीं दौड़ता है, दौड़ने की ज़रूरत है, हाँ थोड़ा दौड़ा करें। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र राज जी। और भाई लतीफ़े और किसने भेजे हैं, किसी ने नहीं भेजे हैं, पम्मी भेजते रहते हैं भाई, पर वो लतीफ़े मैं अकेला पढ़ पढ़ के हंसता रहता हूँ। हॉलीडे ब्रेक्स साउथ हॉल ट्रेवल याद दिला रहे हैं भाई, वो पुरानी बात उनकी दुबई वाली डील्स की। कहते हैं कि वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
5: London. Good news. Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry, South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
7: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. T's and C's apply.
8: Lotto from the National Lottery now gives you two chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you.
9: See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
1: Like a radio network. Proud proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
10: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और लीजिए साहब अगला संदेश सुनवा के फिर गीत लगाते हैं। ओस्लो नॉर्वे से आया है और किसने भिजवाया है, कल्पा हाथी ने। कल्पा ने लिखा है कि थैंक यू फॉर वेरी नाइस शो एंड आई कांट वेट टू वॉच नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड फुटबॉल मैच ऑन सैटरडे। हाँ भाई, ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी सेमीफाइनल में, देखते हैं किसकी एंट्री होती है। क्वार्टर फाइनल में इनकी भिड़ंत हो रही है, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड सैटरडे को। कहते हैं एक सॉन्ग नॉर्वे वालों के नाम लगा दें, क्यों जी इंग्लैंड वालों के नाम ना लगाएं, घर में झगड़ा करवाएंगे आप हमारे। नहीं, झगड़ा तो फिर भी होना है क्योंकि नॉर्वे में मेरा बेटा और बहू रहती हैं भाई, और बहू हमारी अमेरिकन है अंग्रेज, और वो चाहती है कि नॉर्वे जीते क्योंकि वो नॉर्वे के हो रहे हैं, और यहाँ मेरी पत्नी वो इंग्लैंड को जिताना चाहती हैं। अब देखना क्या होगा भाई, डरते डरते सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे। सास बहू में भिड़ंत है, ये नॉर्वे और वर्सेज इंग्लैंड नहीं है, ये सास वर्सेज बहू है। मैंने तो कह दिया भाई, हम तो जीतने वाली टीम का साथ देंगे, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो जीतेगा। और सास बहू में जीत किसकी हो सकती है आप जानते हैं, बहू की ऑफ कोर्स।

0: भाई जीत नॉर्वे की हो या इंग्लैंड की या दोनों की, भाई हार अपनी होगी, हमें पता है मार अपनी होगी, क्योंकि उन सास बहू में बहुत अच्छी बनती है जिनके लिए गाना लगा दिया। मैंने कहा लगा दिया, गलती से लग गया भाई। ओके सुन लेना सह लेना।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors. Manoranjan with Ravi Sharma. Like a gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और भाई रेट्स में इनके बता देता हूँ, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.47 रुपीज फॉर वन पाउंड, पाकिस्तानी 370.6, श्रीलंकन 446.94, बांग्लादेशी टके एक पाउंड के बदले 164.31, अफगानी 85.32 एंड केनियन शिलिंग्स 172.38।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 97.79 pounds per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

लीजिए साहब, कार्यक्रम को समेटने का समय हो गया है। याद दिला दूं आपको कि 1 बजे की खबरों के बाद बाली ब्रह्म भट्ट होंगे आपके मेजबान, और वो जुटा कर लाएंगे बहुत सारा फिल्मी मसाला।

0: चला है।
1: हफ्तों से मिले हो गए और वियोग में पिलपिले हो गए। सदके जूड़ों की ऊंचाइयां, बालों का जूड़ा बना के इतना ऊंचा, सदके जूड़ों की ऊंचाइयां, सर कई मंजिले हो गए। वाह क्या बात है, क्या बात है, सर कई मंजिले हो गए। डाकिये के साथ लव उनका हुआ, डाकिये से लव उनका हुआ और खत हमारे डिले हो गए। परसों शादी हुई कल तलाक, क्या जब सिलसिले हो गए। उनकी यादों के ऊंचे महल, क्या हवाई किले हो गए। और नौकरी हमें रेडियो में मिली, मैसेज उनके रिले हो गए। शर्मा जी इजाजत लो और अपना रास्ता पकड़ो।
0: है तो ज...

आएंगे कल 10 बजे की खबरों के बाद हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ सुपर्ब डे। बाय बाय फ्रॉम रवि शर्मा।

0: पहली बार जब नीतू सिंह और ऋषि कपूर और उनका बेटा रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, सॉरी रणबीर सिंह एंड रणबीर कपूर, रणबीर कपूर जब पहली बार स्क्रीन पे थे, दैट वाज जब तक है जान, 2012 की जो फिल्म थी. यस, आई गॉट इट इन द एंड.
1: Good afternoon. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.

0: वो ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी 16 फिल्में जिसमें ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने साथ में काम किया, उसमें से 13 फिल्म वर फुल लेंथ फीचर फिल्म्स एंड 3 ऑफ देम दे डिड कैमियो अपीयरेंस। अब कैमियो अपीयरेंस अगर मैं सोचूं तो एक फिल्म थी पति पत्नी और वो, उसमें कैमियो रोल था, और एक फिल्म थी लव आजकल 2009 की, दैट वाज अ स्मॉल अपीयरेंस इन देम। फिर जब तक है जान, उसमें भी देयर वाज अ मल्टीपल स्टार कास्ट एंड दे हैड अ स्मॉल रोल। पर 13 फिल्में कौन सी थी? 13, दैट वाज जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में, रफू चक्कर, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, दूसरा आदमी, अनजाने में, पति पत्नी और वो, झूठा कहीं का, दुनिया मेरी जेब में, फिर धन दौलत 1980 में, जब उन्होंने शादी की 1980 में, धन दौलत, और उसके बाद दो दूनी चार, बेशरम, जब तक है जान, लव आजकल। सो 13 फुल लेंथ फीचर फिल्म्स एंड 3 स्पेशल कैमियो रोल्स।
1: This is Leica.

0: महेंद्र कपूर जी की आवाज, फिल्म किस्मत, एंड व्हाट ब्यूटीफुल मिक्सिंग बाय ओपी नैयर। वो गिटार की जो साउंड आती है, दैट पेप्स अप द होल सॉन्ग। किस्मत 1968 की फिल्म, SH बिहारी ने लिरिक्स लिखी थी। चीयरफुल सॉन्ग, आई होप यू एंजॉयड इट।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods, bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
11: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
13: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
14: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
13: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
14: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
13: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
14: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
13: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
14: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
15: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
1: 7 stations. One podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Across London, this is Bali Brambat on Leica Gold.

एक बाइसिकल और दो बच्चे, एंड दैट्स संजीव कुमार. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग हियर, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर. फिल्म है खुद्दार 1982 की, एंड म्यूजिक राजेश रोशन एंड लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी. अब हमारे कलरा जी इज बैक इन एक्शन, एंड कलरा जी इज बर्थडे ऑन 4th जुलाई, एंड हिज डॉटर रीमाज बर्थडे ऑन 5th of July, एंड हिज ग्रैंडसन्स बर्थडे ऑन 7th जुलाई. सो नेक्स्ट सॉन्ग डेफिनेटली फॉर ऑल द थ्री ऑफ देम. वेलकम बैक कलरा जी, वी डिड मिस यू, यू नो. फिल्म है सुजाता, अ चीयरफुल सॉन्ग संग बाय आशा भोसले जी. म्यूजिक है एस डी बर्मन का, मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स है, 1959 की फिल्म. विशिंग कलरा जी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू रीमा हिज डॉटर एंड हिज ग्रैंडसन वीर ऑन 7th of July.

0: सितारों में तुम जियो हजारों साल साल के दिन।
1: From all of us at Laika, wishing you all a very happy birthday, long happy healthy life.

0: कितना प्यारा गाना है एंड स्नेहल भाटकर ने इसको कंपोज किया था और नूतन जी से गवाया था एंड एस रतन ने लिरिक्स लिखी थी। छबीली 1960 की हिंदी फिल्म जिस और इट वाज डायरेक्टेड बाय शोभना समर्थ दैट्स हर मदर अंडर द बैनर ऑफ शोभना पिक्चर्स एंड द फिल्म वाज मेड बाय शोभना जी टू लॉन्च ऑफ कोर्स हर डॉटर तनुजा एंड दोनों बेटियों को फिल्मडम में लाने वाली उनकी माता जी ही थी एंड उस फिल्म में के एन सिंह थे तनुजा थी हेलन आगा इफ्तिखार ब्यूटिफुल एंड द सॉन्ग्स वर बड़ी अच्छी तरह सजाए हुए थे एंड एक डीन मार्टिन की एक सिंगर एक्टर इन हॉलीवुड उनका एक गाना था द मैन हु प्लेज द मैंडोलिन इट्स एन इटालियन सॉन्ग था गुगलियोने गुआग्लियोने एक इटालियन गाना है उसमें से डीन मार्टिन ने गाया और उसमें से स्नेहल भाटकर ने लेकर लहरों पे लहर और हेमंता को गवाया था विद नूतन जी सो दैट वाज फिल्म छबीली
1: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
2: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays, hum se कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
5: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
4: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियल अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
5: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
4: स्टेप इनसाइड and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs अप्लाई
7: लंदन गुड न्यूज आपका फेवरेट आईटेक अब TRS कैश एंड कैरी साउथ हॉल में ह्यूज variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices perfect for retailers traders takeaways and caterers iTech is open 24/7 with free parking full iTech at unit 123 south bridge way south hall UB2 4AX once you visit you come again and again
6: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk. From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
8: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
9: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Kajal's Couture. For every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
3: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
2: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
3: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
2: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
3: Visit kajalscouture.co.uk.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
5: ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज,
6: डिस्कवर the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
7: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
6: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
7: At all protected.
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
9: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
10: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208767-7627।
11: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।

0: कितना प्यारा गाना है. आई लव द ओवरलैपिंग एंड एवरीथिंग ऑफ शैलेंद्र सिंह एंड लता मंगेशकर. फिल्म है चलते चलते. इन दिस आवर इट्स ऑलवेज बीन थ्रू आउट द आवर आई नोटिस्ड इट वॉज क्या क्या था. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट right at the beginning of the hour I had started off with something like ruki ruki thi zindagi ruki ruki two words and then kangana kangana and then ye film thi chalte chalte so Amar Akbar Anthony ka maine gana chuna hai abhi and next is going to be none other than yes Sandy Shah with his drive time and Raj Patan on Leica Radio Midlands and gana hai remembering Nitu Singh ji's birthday today. Rishi Kapoor and Nitu Singh of course were in that film Amar Akbar Anthony 1977 ki parda hai parda. Bali Brahmbhatt ka namaskar.
1: Feel good hits in the sun with Leica Gold.

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

0: Live with Sandy Shah.
1: ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com
2: कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com.
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट ट्रेवल हब world.com.
4: Kajal's Couture for every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
5: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
4: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
5: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
4: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
5: Visit Kajal's. kajalskachor.co.uk.
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
9: SonaTours.co.uk. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call SonaTours on 0208-951-0111.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
10: Oh yeah.
0: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio.

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with the travel. Still got delays on the M4 onto the elevated section eastbound. You head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. A312 the Parkway, heavy southbound before the M4 Junction 3. A312 Church Road and Mandeville Road, heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. And you're queuing on the A406 North Circular Road both ways at the Hanger Lane Directory. There's congestion on the A316 Chertsey Road westbound from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout, and the A3 West Hill busy northbound between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road. To the Tube, and severe delays on the Hammersmith and City District and Circle lines due to points failure at Whitechapel.
0: This is Like a Gold.
2: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रीकाना स्थलोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नैरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
3: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
2: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
3: कॉल करो दीप्ति पांड्या ने
2: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
7: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635. 757 Greens by Danube Prime Location
7: High Appreciation
8: in Dubai
9: Hey, friends के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total riz, है ना?
10: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
9: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods Potato Chips now.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है pre-booking sale का शानदार मौका. अब सभी Bosch boilers पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
0: Next Ashwini in for Anisa Nasir on the evening show on Like a Gold
12: हाय मैं हूँ अश्विनी हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप और हम साथ मिलकर मनाएंगे आज फील गुड वेंसडे। भाई पूछें आप सबसे कैसे हैं आप सब। आई नो गर्मी से हैरान परेशान पांदान थुकदन वट एवर दैट वर्ड्स गुड विद ऐसे ओके। सो एनीवेज गर्मी है तो है, और अब आप और हम साथ हैं तो बिल्कुल हैं। एंड इस इवनिंग शो में जब आप और हम मिल जाते हैं तो पूरी की पूरी हो जाती है धमाल चौकड़ी, यहाँ पे बैठ जाती है, खूब गपशप होती है, मज़ा मस्ती इंटरेक्शन होता है एंड साथ में होते हैं मेलोडियस गीत। तो हमेशा की तरह अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, दे दनादन सबने आके फटाफट अपनी हाजिरी लगवाई है। एंड मेरे प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स मुस्कुराओ नहीं आप, ठीक है चलो आ जाओ, इट्स ओके टू से हेलो टू अश्विनी वंस अ व्हाइल चलेगा। अच्छा आज मैं रीज़न अगर बताऊं सो आई एम श्योर मैक्सिमम हमारे साइलेंट लिसनर्स जो हैं वो भी आज मुझे पक्का मैसेज करने वाले हैं बिकॉज उनकी दुआओं से एंड आप सबके आशीर्वाद से आई एम सेलिब्रेटिंग सच अ स्पेशल डे टुडे। आज मैंने रेडियो इंडस्ट्री में पूरे 11 साल कंप्लीट किए हैं एज अ रेडियो प्रेजेंटर, एज अ आरजे, इस म्यूजिकल वर्ल्ड में, इस प्रेजेंटेशन की दुनिया में, इस माइक के साथ, स्पीकर्स के साथ एंड रेडियो वेव्स के साथ मैं मिलती आई हूँ आप सबसे लगातार पूरे 11 वर्षों से। सो आप सबका प्यार दुलार लाड बेस्ट विशेस आशीर्वाद ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिए ताकि मैं यहाँ पे आऊँ आप लोगों का मनोरंजन कर सकूँ। और सरस्वती देवी का जो आशीर्वाद मेरी जीभा पे है, जो थ्रोट चक्रा मेरा काम कर रहा है, उन सब चीज़ों के लिए आप सबका आशीर्वाद हमेशा की तरह बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा। सो तहे दिल से बिल्कुल इन ग्रैटिट्यूड धन्यवाद टू ईच एंड एवरी पर्सन लिसनिंग अराउंड द ग्लोब। आप सबका प्यार जो है वही यहाँ तक मुझे लेके आए। जी हाँ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन ये जो जर्नी है ये जर्नी कभी छूटी नहीं और ये कभी छूटने भी वाली नहीं है। सो बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड दैट्स द रीज़न मैंने ये गाना प्ले किया था आज मैं ऊपर आसमान नीचे। एंड देन अब देखिए आप और हम सारे गमा पा रोज ही करते तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप सबसे प्रैक्टिस करवा लूँ। एंड सवाल क्या होने वाला है मेरा, अभी पूछूँ या थोड़ी देर में बताऊँ, चलिए पूछ लेते हैं आज का सवाल। नैना थोड़ी देर बाद ही पूछते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के लिए आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीज एंड 10 पैसे। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन या SBI Yono मोबाइल ऐप भी यूज करिए। टर्म्स एंड कंडीशंस तो अप्लाइड हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. Season

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: आज रात फ्रांस और मोरक्को के बीच गेम खेला जाएगा रात 9 बजे. एंड डोंट फॉरगेट यू गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक.
0: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स. कॉल 0203 345 2000 और विजिट rak law.co.uk.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 25 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। हमेशा की तरह किसी लाइफ थियोरी पे बात होगी, तो आज बात करेंगे द सेंट थियोरी। सेंट सुगंध, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो थियोरी क्या है भाई, अगर आप फिश मार्केट में हैं और आपने अगर एक भी फिश, एक भी मछली नहीं बेची, लेकिन क्योंकि आप फिश मार्केट में बहुत देर के लिए थे, तो वो जो स्मेल है वो आपके साथ रह जाता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे किचन के आसपास खड़े हैं, तो जो फूड है उसका अरोमा आपके पास रहता है। वैसे ही किसी परफ्यूम के शॉप में जब आप जाते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए जाते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं उस परफ्यूम के शॉप से, तो महकते हुए निकलते हैं। तो बात क्या है और थियोरी क्या है आज की, हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट के बारे में। आप जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसका इफ़ेक्ट आपके आसपास रहता है और वो इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी आता है। तो अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं लाइफ में जो आ जाके सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप भी नेगेटिव बन जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो सिर्फ कंप्लेन करना जानते हैं, किसी भी चीज़ में खुश नहीं होते, देखिए आप भी अपने आप वो सीख जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो न्यूट्रल हैं, जिस किसी चीज़ के लिए उन्हें कुछ लगता ही नहीं है, कुछ दिनों बाद आप भी वैसे ही बन जाते हैं। और अगर आप खुशनुमा, मेहनती, डायनामिक, गोल ओरिएंटेड लोगों के साथ हैं, तो आप खुद भी वैसे बनते जाते हो। तो आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपके जो लोग हैं आपके जीवन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली, आपकी जो एनवायरनमेंट है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर रहता है, और वो इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है। तो कौन से सेंट के साथ में आप जी रहे हैं, ज़रा रुकिए, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करिए, थोड़ा सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, और देखिए कि कैसे किसी परफ्यूम सुगंध की तरह आपको खुशी से मुस्कुराते हुए फैलते जाना है, या फिर फिश मार्केट वाली जो स्मेल है उसके साथ जीना है। डिसीजन है आपका, क्योंकि लाइफ है आपकी। कैसी लगी द सेंट थियरी, ज़रूर बताइएगा।
1: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: आपके सामने एक रेड बटन है,
3: दबा दिया।
2: नहीं दबाना था।
4: The madness is back. धमाल 4.
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
4: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamal 4. Directed by Indra Kumar.
6: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
4: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
7: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता।
8: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
9: No more worries for me.
10: Southall Travel, at all protected.
11: London, good news. आपका favorite iTech अब TRS Cash and Carry Southall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall UB24AX. Once you visit, you come again and again.
3: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
12: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
13: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लेकिन फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मोहम्मद रफी की आवाज में फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. बहुत सारी विशेस आ रही हैं फॉर माय जर्नी एंड जिन लोगों ने मुझे डे वन से देखा है तो उनकी स्पेशल विशेस भी आ ही रही हैं. सो आई स्टिल रिमेंबर एंड आई हैव शेयर दिस बिफोर. आई डोंट रिमेंबर इफ आई हैव शेयर्ड इट हियर. सो मेरा फर्स्ट शो जब था 11 ईयर्स अगो, सो दैट टाइम ऑब्वियसली माई फैमिली, माई एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीबडी हु नोज मी एंड मेरी ये जब जर्नी शुरू हुई, सो मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उन सभी ने मेरा शो ट्यून इन किया था एंड 60 फ्रेंड्स जो मेरे स्कूल मेट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं अराउंड द ग्लोब, वो लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं, कोई कनाडा में, कोई यूएस में, कोई इंडिया में, कोई जर्मनी में, कोई स्विट्जरलैंड में, उन सभी ने मेरा शो उस दिन ट्यून इन किया था. आफ्टर एवरी सॉन्ग, आफ्टर एवरी लिंक दैट आई स्पोक, उन सब के फीडबैक आ रहे थे एंड दे वर लाइक क्या बात है आरजे, क्या बात है आरजे. एंड आई एम लाइक आरजे, यू नो यू डोंट गेट यूज टू दोज वर्ड्स, बट इन 11 ईयर्स में वो लोग मेरा नाम अश्विनी भूल चुके हैं. दे ऑलवेज कॉल मी आरजे एंड आई डू स्माइल बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम ऑल दोज स्कूल फ्रेंड्स. जब हम यहाँ पे नर्सरी कहते हैं, हम इंडिया में कहते हैं LKG, तब से टिल GCSE तक हम लोगों का सफ़र रहा है और अभी भी हम लोग सब कनेक्टेड हैं. सो आज भी जब ग्रुप पे बहुत सारी ढेरों विशेज आई तो बहुत अच्छा लगा. एंड देखिए यही होता है कि जब, जैसे हमने भी कुछ देर पहले बात की, जो एनवायरमेंट होती है, तो हमारे जितने भी बेसिकली जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं ना, हम लोग किसी भी ओहदे पे ज़िंदगी में कहीं पर भी पहुँच जाए, एक तो पहली चीज़ हम जो भी अचीव करते हैं वो अपने खुद के लिए अचीव करते हैं, तो उसका शो ऑफ तो पहली चीज़ होना ही नहीं चाहिए किसी के लिए. एंड डोंट डू थिंग्स टू प्रूव एनीबडी एल्स, क्योंकि फिर वो जो जर्नी आप करते हैं किसी को प्रूव करने के लिए लाइफ में कि अब मैं इसको बताऊंगा या अब मैं इसको बताऊंगी, डोंट डू दैट, बिकॉज उसमें ना फिर आप वो जो चार्म होता है ना उस अचीवमेंट का, वो आप खो देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो शिद्दत लगती है ना, जो मेहनत लगती है, उसमें कहीं ना कहीं प्रूव करने की एनर्जी, इट्स नॉट अ गुड एनर्जी, राइट. प्रोसेस को एंजॉय करिए बिकॉज प्रोसेस इज ब्यूटिफुल, एंड रिजल्ट जो आना है वो तो आना ही है. सो हमेशा हमेशा अपनी खुशी के लिए चीज़ें कीजिए, ना कि किसी को प्रूव करने के लिए. जिन्होंने भी हमारा शो अभी ट्यून इन किया है, आप सभी को हेलो एंड बिल्कुल सुनते रहिए. हमारे इस आवर का फीचर है यादों की बारात एंड आई हाय हाय हाय हाय नया दौर से सुना रही हूँ आप सभी को ये गीत. अच्छा, अब ये गीत उन सब के लिए डेडिकेटेड है जिनकी जुल्फ़ें हैं. अब जिनकी जुल्फ़ें कम हो गई है, इट्स ओके ना, कभी तो थी. एंजॉय नेक्स्ट ट्राई.
0: लाइका गोल्ड, द इवनिंग शो विद अश्विनी.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 43 मिनट्स पास 7, 8th ऑफ जुलाई वेंसडे, मिड डे ऑफ द वीक, माय मोस्ट फेवरेट डे। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि वेंसडे ना अपने आप ही मैं चहकने लगती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दो दिन इधर एंड दो दिन उधर। ओके, आज का सवाल मैंने पूछा नहीं है आप सबसे, सवाल यही है कि भाई हम सब ना कुछ वहम पाल के चलते हैं। अब वो वहम ऑब्वियसली बड़े होने के बाद हम नहीं पालते हैं, लेकिन बचपन में टिल आ यूथ, जब तक हमें लॉजिक समझ में आता है उसके पीछे का, हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। सो फॉर मी देयर वर सर्टन बर्ड्स जिनका नाम मुझे भी पता नहीं, हम लोग महाराष्ट्र इंडिया में उसे कुछ डिफरेंट नाम से पुकारते थे। अगर वो एक बर्ड दिखता है तो वन फॉर सॉरो, दो दिखते थे तो टू फॉर लव एंड थ्री फॉर जॉय। सो जब मेरी एग्जाम्स होती थी तो मैं अपनी आई यानी मेरी मम्मी को बोलती थी कि आई प्लीज़ आप बाहर आंगन में जाके देखो ना कितने बर्ड्स हैं, अगर दो बर्ड्स हैं तो मुझे बुलाना बिकॉज मेरी आज एग्जाम है, तो यू नो मेरा मतलब दो तीन, तो मम्मी बोलती थी दो तो लव के लिए आए, अरे यार दो तीन मतलब एक नहीं होना चाहिए बस। सो यू नो मदर्स कैसे, ना दैट आई एम अ मदर, सो ऑब्वियसली आई यूज ऑल दिस टैक्स टू चेक माई विद माई डॉटर ऑल्सो कि हाँ क्या चल रहा है। सो एनीवेज, तो ऐसे कुछ वहम अगर आपके पास है तो ज़रूर बताइए, जो बड़े होने के बाद आपको समझ में आएंगे ये तो झूठ है जज साहब, ये सच नहीं है।
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ, मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता, कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड,
3: विजिट travelhubworld.com।
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram.
5: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamareRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
4: Exclusive radio partner Like Our Radio.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
7: But how? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simsy before we left London.
7: Simsy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get £600 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better. This is Leica Gold.

0: है लाइका गोल्ड.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1, you'll get 128.09 Indian rupee, 372.63 Pakistani rupee, 449.22 Sri Lankan rupee, 165.21 Bangladeshi taka, 85.77 Afghani, 173.25 Kenyan shilling, and 1.34 US dollars.
0: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan, or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
0: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £97.09 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: ये शोले का ये जो मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करती हूँ, आई नो आप सबको ये इतना ज़्यादा पसंद है. अच्छा तो सोचो, अगर आप और मैं किसी जगह मिल जाए, हाँ, और हमारा अपना एक कॉन्सर्ट हो, ठीक है, बाकी फॉरगेट एवरीबडी एल्स, कि हम सारे मतलब आप और मैं और बैठेंगे वहाँ पे हम लोग धमाल चौकड़ी करने के लिए, एंड फिर उसके बाद में जो गपशप शुरू हो जाएगी, क्या बात है, मज़ा आने वाला है. जैसे अभी कई लोगों को अभी पता चला कि आई एम अ महाराष्ट्रियन, एंड देन उन्होंने कहा कि क्यों भाई, हमें मराठी हमें आती थी लेकिन हम भूल गए, हमें सिखाएंगे. अरे बिल्कुल बिल्कुल सिखा देंगे, लेकिन नो फ्री में, बिकॉज यहाँ पे ना फीस लगती है, एंड द फीस वुड बी यम्मी लिशियस खाना जो आप लोग अपने अपने घर पर बनाते हो और रोज़ शाम को मुझे जलाते हो. क्यों करते हो ऐसा, क्या ही मतलब आप लोगों को खुशी मिलती है, इतनी अच्छी अच्छी डिशेस के फोटोज रोज भेजते हो. समझना चाहिए कि मेरे भी सलाइवरी टाइम सेट इज हैपेंड, तो मैं अपने घर पे बना के आई हूँ कि टुडे आई हैव मेड पास्ता एंड समबडी एल्स हैज आल्सो मेड पास्ता एंड वी आर लाइक दे ताली.

0: Feel good classics all day. This is Like a Gold.
1: India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: एक पाउंड के लिए आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपीस एंड 10 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Welcome, this is the second hour of the evening show with Ashwini. Wednesday, feel good Wednesday में कौन सा गीत लेके आई हूँ? You will love that track for sure. लेकिन अभी बात करते हैं उन दो गीतों के बारे में जिन गीतों से इस आवर का आगाज हमने किया. आवाज तो हमको, what a beautiful track. And being a 90s kid, definitely this is one of my favorites. So 1998 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. इसके बाद आप सभी को सुनाया महान फिल्म से आशा भोसले एंड आर डी बर्मन की आवाज़ में. एंड उसमें आशा भोसले की आहा, वो जो होते ना वो जो चीज़ें आती है आशा भोसले, जिस तरीके से आशा ताई एक वर्सेटाइल सिंगर थी और जिस तरीके से वो प्रेजेंट करती थी, वो मस्ती जो है ना वो फील होती थी लिसनर्स को भी. And that's the reason I used to always have a debate with my आई. She used to love लता मंगेशकर and I loved आशा ताई. So हम दोनों बस अपने ही इसमें लगे होते थे उस उधेड़ बुन में कि कौन अच्छा है. दोनों बहनें हैं, दोनों इतना सुंदर गाती कि कोई कंपेरिजन ही नहीं है. लेकिन होता है ना कि जब आप किसी एक सिंगर को ज़्यादा फेवर करते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं. ओके, तो मौसम बेईमान हो चुका है हम सब के लिए बिकॉज बहुत धूप है ना. सो प्लीज़ इस धूप में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें. प्लीज़ लिक्विड्स पीते चलिए. ठंडे मौसम, ठंडा जहाँ जिस रूम में जहाँ पे भी आपने ठंडक बना रखी हो प्लीज़ जाइए. एक्चुअली आज सुबह ऐसे ही मज़ा आता था व्हेन आई वाज कुकिंग. एंड जब होता ही ना कि ना जाने कितनी बार हम रेफ्रिजरेटर खोलते हैं. एक्चुअली नहीं, असाइनमेंट हमने कल के लिए रखना चाहिए कि आज आप देखो या कल आप ऑब्जर्व करो कल शाम तक कि कितने बार दिन में से आप अपना रेफ्रिजरेटर खोलते हो. जैसे कि हम अपना फ़ोन कितनी बार अनलॉक करते हैं ना, वैसे ही देखना चाहिए कि हम फ्रिज भी कितनी बार खोलते हैं. चलिए आप और मैं हम मिल के ना ये एक असाइनमेंट लेते हैं कल के लिए. कल आके हम बताएंगे कि दिन में से इतनी बार हमने फ्रिज खोला. द मोमेंट यू ओपन द डोर ऑफ द फ्रिज एंड इट्स लाइक हाँ ठंडा एकदम, यू फील लाइक फ्रिज में जाके बैठ जाओ. सो जो भी अभी गर्म ये सीज़न चल रहा है अनटिल अनलेस आपके लिए कंपलसरी है कि आप बाहर जाओ. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. प्लीज़ घर में रुकिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए एंड अपना मूड भी अच्छा रखिए बिकॉज हीट जब बढ़ती है तो इंसानों का मूड अफेक्ट होता है. और इस विषय पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं. नेक्स्ट ट्रैक फॉर ऑल ऑफ यू.

0: Football Score Update, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: क्वार्टर फाइनल्स फीफा वर्ल्ड कप में आज फ्रांस और मोरक्को के बीच मैच होगा रात 9 बजे. डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स ऑफ फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: चलिए एक बार मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 8:23. बिल्कुल, हम लोग भी बीच बीच में जाके अब तरह चाय कॉफ़ी का ब्रेक लेकर आते हैं, तो आप लोगों को जब रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम हो जाए तो समझ लीजिए कि हम भी अपना एक छोटा सा चाय वाला ब्रेक लेके आते हैं. चाय एंड कॉफ़ी, ओके. सो मेरी ये जो पड़ोसन है रेडियो वाली, शी इज़ अ कॉफ़ी पर्सन. फॉर मी आई एम चाय एंड कॉफ़ी बोथ पर्सन. सो जहाँ जब जो मिल जाए ले लेते हैं. बट चाय एंड कॉफ़ी का प्रेफरेंस है तो डेफिनेटली चाय. अर्ली मॉर्निंग ब्लैक कॉफ़ी, हम सब इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं. हमने मैंने आपको बताया ब्लैक कॉफ़ी विथ 1 स्पून ऑफ घी, उसका बेनिफिट क्या होता है. अच्छा, ये जो रील्स आती है ना आजकल, डेफिनेटली रील्स हैव बिकम लव लैंग्वेज, लेट इट बी एनी रिलेशनशिप. ओके, फ्रेंड्स हैं, लवर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, माता पिता, बच्चे, जो भी हैं. तो परसों मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, एक इंसान को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने 100 रील्स अपने फ्रेंड को भेजी और वो फ्रेंड इतना परेशान हो गया कि उसने एक्चुअली पुलिस में कंप्लेन की और पुलिस आके उसके पकड़ के ले गई. अब ये एक्चुअली सच था या झूठ मुझे पता नहीं. 100 रील्स, आई मीन इट हैपन्स मी एंड माई फ्रेंड्स वेन वी शेयर रील्स, तो हम लोग आधा दर्जन तो भी दे देते हैं. मतलब होता है ना जैसे 6-7, चलिए ठीक है 6-7, हाँ बच्चे सुन रहे होंगे तो नहीं, 6-7 आजकल जो चल रहा है. सो या 5-6 रील्स भेज दो, आधा दर्जन, तब तक समझ में आता है. लेकिन उससे ज़्यादा 100 रील्स अगर किसी फ्रेंड ने किसी को भेजोगे तो मानसिक संतुलन कहाँ चला गया होगा, ये डेफिनेटली लगता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट टेलीविजन. जब भी हम चैनल्स फ्लिप करते रहते हैं, बहुत स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा केटर हो रहा है, सारी चीज़ें बहुत अति मिल रही हैं. तो क्या हम उन सब चीज़ों की कीमत कर रहे हैं जो हमको अति मिल रही हैं? स्पोर्ट्स अति मिल रहा है, वेब सीरीज़ अति मिल रही है, फिल्में मिल रही है, सब कुछ ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन कम जो मिलता है वो यहाँ मिलता है. एंड दैट इज़ फैंटास्टिक म्यूज़िक, मेलोडियस म्यूज़िक, आपके अपने लाइका गोल्ड रेडियो पे, इवनिंग शो विद अश्विनी में, जहाँ बाय वन एंड गेट सो मेनी थिंग्स फ्री. मतलब आप ट्यून इन करते हैं म्यूज़िक सुनने के लिए और उसके साथ में मेरी चटर पटर गपशप और आप लोगों की तरफ से आने वाले फीडबैक, कमेंट्स और अपनी खुशियाँ, दुख, जो भी आप यहाँ पे आते हैं जब आप बांटते रहते हैं. आई एक्चुअली फील अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. देखो ना, आपके घर में आई गई हूँ ना रेडियो के थ्रू. सो आई एम पार्ट ऑफ योर फैमिली.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Looking to boost your career or just starting out? As the experts in online learning, the Open University has over 200 qualifications to choose from, like business, psychology, computing, and many more, with tutor support and courses that fit around your life. Getting those in-demand skills employers are looking for isn't so far away. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
0: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
3: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
4: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
3: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
4: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
3: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
4: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
0: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a melodious, beautiful track that was. लता जी की आवाज में आकाशदीप फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत. 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. एंड शायद मैंने मेंशन किया है पहले भी कि हमारी लिसनर है अरुणा जी, जिन्होंने मुझे अरुणा शाह जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था ये गाना 6 साल पहले. जी हाँ, 6 years ago उन्होंने ये गाना मुझे रिक्वेस्ट किया था. दैट टाइम आई यूज़ टू टेक रिक्वेस्ट ऑन द शो पैटर्न उस समय वैसा था. सो शी इंट्रोड्यूस दिस सॉन्ग एंड ये गीत ना मैं हफ्ते में से एक बार सुनती हूँ. बहुत ठहराव वाला गीत लगता है मुझे, बहुत सुंदर गीत है. हर गीत की अपनी एक स्पेशलिटी है. मतलब जहाँ मुझे यमा यमा ये वाला गीत भी अच्छा लगता है, वहाँ मुझे दिल का दिया ये वाला गीत भी अच्छा लगता है. एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो मूड रहता है ना, उस हिसाब से जब गीत आते हैं. तो कहा जाता है ना कि जब आप सैड होते हैं तो आप लिरिक्स को समझते हैं, और जब आप खुश होते हैं तो आप झूमते हैं म्यूज़िक के साथ में. सो यहाँ पे अब इस सीट पे बैठ बैठ के लिरिक्स भी समझना सीख गए और झूमते तो हम वैसे ही हैं. इमोशन ऑफ द डे, जी हाँ, फील गुड वेंसडे मना रहे हैं आप और हम. एंड इस फील गुड वेंसडे के लिए, आप सबके लिए मेरी तरफ से ये गीत एंजॉय करिए.
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड. Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show. Like a gold. Emotion of the day.

0: इमोशन ऑफ द डे।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: Extra podcast update.
1: Podcast episode 23rd is out for you, and you can definitely listen and watch to this. Rise in Women's Cricket, hosted by Deep Raja. बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे discussion हुआ है, debate हुआ है, तो we discussed how current cricketers are challenging stereotypes and inspiring the next generation. Like a extra podcast available है Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms पे.
0: Like a extra is here. The Evening Show with Ashwini. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
3: आपके सामने एक रेड बटन है.
4: दबा दिया.
3: नहीं दबाना था.
5: द मैडनेस इज बैक. धमाल 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
5: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी. रिटर्न इन धमाल 4. डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
5: गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर इन सिनेमाज वर्ल्ड वाइड फ्रॉम द 10th of July.
8: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता.
9: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
10: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This week's Leica Extra podcast episode, Deep Raja talks about the rise in women's cricket.
11: Have we done enough for women? What if not, what do we do?
12: Right, it's never enough, but there's a lot of work being done. There's so many programs now. So give some credit to the counties and the countries where they've got coaches, they've got scouts.
0: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1 you'll get 128.08 Indian rupee, 372.88 Pakistani rupee, 449.14 Sri Lankan rupee, 165.19 Bangladeshi taka, 85.91 Afghani, 173.23 Kenyan shilling, 1.34 US dollars.
13: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.09 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 49 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. बात करते हैं गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में और कोई बात करता है कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन आप और हम यहाँ पे जरूर बात करते हैं. सो इन ऑस्ट्रेलिया साइंटिस्ट आर डेवलपिंग ट्रीटमेंट्स फॉर पोस्ट पार्टम डिप्रेशन दैट वर्क्स मच फास्टर. इन स्विट्जरलैंड साइंटिस्ट क्रिएटेड अ ब्लड टेस्ट दैट कैन डिटेक्ट कैंसर years earlier. In Finland, parents are spending more time with newborns than ever before. Obviously, उनको छुट्टियां भी उस तरीके से मिल रही होंगी ऑफिस की तरफ से. In United States, gene therapy is restoring hearing in some people born deaf. Oh my God, seriously, कितनी अच्छी चीज है कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं जन्म से उनके लिए कुछ तो नया आ रहा है. आई एम सो ग्लैड फॉर दिस. इन यूनाइटेड स्टेट्स एआई पावर्ड ग्लासेस कैन डिस्क्राइब द वर्ल्ड टू ब्लाइंड पीपल. मतलब हैट्स ऑफ है टू ऑल दोज रिसर्चर्स जो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं. इन जापान साइंटिस्ट आर डेवलपिंग अ ट्रीटमेंट दैट कुड अलाउ पीपल टू ग्रो न्यू टीथ. ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग. And in Australia, inclusive workplaces are hiring more people with Down syndrome than ever before. मतलब इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि हम कलयुग में हैं, मुझे लगता है हम सतयुग में हैं, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं. बस नज़रिया होना चाहिए. अच्छी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, आसपास में भी, और जब हम सभी अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो सोचिए ना कहीं वॉर होंगे, ना कहीं लालच होगा, ना कहीं दिल तोड़ना होगा, ना किसी से कुछ स्नैच करना होगा. लेट्स प्रे कि ये सब चीज़ें हो. लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर जीने की रहा इस फिल्म से आप सभी के लिए ऑन द इवनिंग शो विद अश्विनी.
0: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे लाइक अ गोल्ड. दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
14: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
15: वेडिंग, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
16: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
17: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
16: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
18: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
19: द इवनिंग शो विद अश्विनी.
0: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: अब इनका जो ये सवाल था ना, क्यों सजना पे दिल आ गया, क्यों सजनी पे दिल आ गया, अब ये फ्रस्ट्रेट होके बात कर रहे हैं कि खुशी में पूछ रहे हैं। इनका तो यही जाने हिम्मत वाला फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत नैनो में सपना। एंड उसके पहले मेरी दुनिया है, दोनों ही ट्रैक्स बड़े मेरे फेवरेट है। एक्चुअली देखो जो प्ले लिस्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ चुनके, वो ऑब्वियसली मेरे फेवरेट ट्रैक्स होते हैं। एंड एज आई सेड यस्टरडे कि हम लोग आवर के हिसाब से लगाते हैं, अब वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द थर्ड आवर। सो वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। गजल या कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, जल्दी जल्दी बताइएगा। एंड 8th of July किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी, किसी को आज नई नौकरी लगी होगी, किसी ने आज अपनी 11th एनिवर्सरी मनाई भाई वर्क पे, हाँ तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। एंड किसी के लिए कुछ तो आज अच्छा चेंज रहा होगा और किसी के लिए कहीं ठहराव आया होगा, है ना। जिंदगी एक रूप अनेक, हम अपनी ज़िंदगी में जो अलग अलग पड़ाव पे आगे बढ़ते जाते हैं तो वो पड़ाव हमें कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं, है ना। जैसे हम हर रोज़ किसी ना किसी लाइफ थियोरी पे बात कर रहे हैं, वो जो लाइफ थियोरी होती है वो हमारे साथ में रह जाती है। तो ये थियोरी सुनाने का मेरा इंटेंशन इतना ही, हमेशा कहा जाता है कि कोई इंसान आपसे मिलके चला जाए लेकिन उसकी थॉट्स अगर आपके साथ में रहती है तो कुछ तो कमाल करके गया। तो इस शो को जब मैं प्रेजेंट करती हूँ आप सबके लिए, इंटेंशन ये होता है कि शो से मैं निकल जाऊँ टाटा बाय करके, उसके बाद जो थियोरी ऑफ लाइफ आपको सुनाती हूँ वो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में रहें, और अगर उसका कुछ इम्पैक्ट आप पे है तो आपके एक्शंस में आ ही जाएगा। नेक्स्ट ट्रैक, आई हैव टू एडमिट दिस इज अगेन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स। सुनिए और फिर आप मुझे मैसेज करके बताओ कि कैसा था ये ट्रैक।
1: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपीस और 10 पैसे। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लाइका रेडियो फुटबॉल स्कोर अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स स्पेशलिस्ट्स ऑफ फैमिली लॉ इमिग्रेशन लॉ प्रॉपर्टी सिविल डिस्प्यूट्स विल्स एंड प्रोबेट्स एंड फॉर अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स।
2: सो फ्रांस और मोरक्को के बीच 9 बजे मैच होगा, लेकिन आज नहीं, वो होने वाला है कल। एंड डोंट फॉरगेट, यू गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: मिला लेंगे घर, यहाँ देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 23 मिनट्स past 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप और हम मिलते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम 7 से 10 बजे तक। मिड वीक शो भाई, थर्ड आवर आप और हम आ गए, बस आधा घंटा और फिर मैंने कहना है टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलूंगी, कल मिलने वाली हूँ, अभी जा नहीं रही हूँ, अभी हूँ। एंड गज़ल या कव्वाली, मैं क्या सुनाने वाली? सो बिल्कुल मैं आज लोगों को सुनाने वाली हूँ कव्वाली। और उसके पहले आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी का लिखा गीत आपको सुनाने वाली हूँ। 20 साल बाद इस फिल्म से कहीं दीप जले कहीं दिल। ओके, तो विद दिस सॉन्ग ना मेरी मेमोरीज मैं डरती थी इस गाने से, छोटी थी ना, बिकॉज इसमें जो म्यूज़िक था ना, तो आई यूज़ टू फील पता नहीं क्या ही होने वाला है। सो होता है ना जब बचपन में कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनका इम्पैक्ट आप पे होता है, लेकिन स्पेशली दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स ना मैं डरती थी। एंड आई यूज़ लाइक कि अगर ये गाना रेडियो पे चल रहा है तो आई यूज़ टू लीव दैट रूम, मैं दूसरे रूम में जाके या बाहर कहीं आंगन में जाके खड़ी हो जाती थी, पता नहीं क्यों। बट या दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनाएंगे आपको ये गीत। एंड उसके बाद मैं सुना रही हूँ आप सबको कव्वाली, तो वक्त फिल्म की कव्वाली। हाँ भाई, 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अपनी अपनी जोहर जबियों को साथ में लेके बैठी, ठीक है, कुछ हुआ रहेगा दिन भर में, मन मुटाव है, कुछ भी, ये कहना कि आज आज मैं तुम्हें एक गीत डेडिकेट करूँगा। और लाओ अपनी अपनी जोहर जबियों को और उनके लिए गीत डेडिकेट कर दो, कि ना अश्विनी को हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे जोहर जबी के लिए ये प्ले कर दो। अगर वो रेडियो नहीं सुन रही है तो, अगर वो आपके साथ बैठ के, अगर आपके तरफ अभी नज़रों में नज़रें डाल के कह रही हैं कि ये झूठ तो तुम मुझसे नहीं बोल सकते, हाँ मैं यहाँ पर सुन रही हूँ एंड आई नो वॉट अश्विनी इज सेइंग। सो गए काम से, एनीवेज ऐसा ज़माना होता। आई जस्ट टोल्ड यू आई लव दिस ट्रैक। जमी आसमान फिल्म से सुनाया था लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। The moment this song started, I got so many messages. आप मेरे 100 पे से समझ जाइए कि कितने सारे messages आए। And everybody is like, ये तो हमारी playlist पे था, तुम कहाँ से चुरा लाई? I can read your minds. देख लो, यहाँ बैठी हूँ स्टूडियो में, लेकिन आप लोगों के दिल में, जहन में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। सो खुश हो जाइए, बिकॉज अगले दो ट्रैक्स भी आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप सभी ने ट्यूनिंग किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। और अगर आपकी आज की लाइफ थियरी मिस हुई है तो मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। मैं हर रोज़ ही जो लाइफ थियरीज यहाँ पे बताती हूँ उसका वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, और मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है रेडियो वाली अश्विनी, उस पर मैं पोस्ट करती हूँ। तो अगर मिस हो गई है आज की थियरी, ज़रूर वहाँ चल के देख लीजिएगा।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Look at you. The future is unpredictable at times, but the Open University are the experts in online learning, allowing you to fit study around your life. What's more, you'll have support from dedicated tutors every step of the way. Now, suddenly your possibilities are open. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
1: This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
4: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
5: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
4: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
5: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
4: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
6: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
8: Southall Travel, Atoll Protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting, but it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
10: You know how fans shout at football matches?
11: Oh, wake up!
10: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
12: Like a goal. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
1: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai
3: Like a Gold.
4: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: आपके सामने एक रेड बटन है
4: दबा दिया
3: नहीं दबाना था
5: द मैडनेस इज बैक धमाल 4
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
5: स्टारिंग अजय देवगन अर्शद वारसी रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी रिटर्न इन धमाल 4 डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार गेट रेडी फॉर द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर इन सिनेमाज वर्ल्ड वाइड फ्रॉम द 10th ऑफ जुलाई
7: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Sounding better than ever in the sunshine. Sponsored by This Mobile is app. Like a Gold. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
9: For £1, you'll get 128.01 Indian rupee, 372.34 Pakistani rupee, 448.65 Sri Lankan rupee, 165.01 Bangladeshi taka, 86.61 Afghan Afghani, 173.09 Kenyan shilling, and 1.33 US dollars.
10: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LEICA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
9: Gold is currently trading at £97.97 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
9: चलिए मिला लेंगे घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ है इट्स 46 मिनट्स पास्ट 9 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी फील गुड वेंसडे मनाया आपने और हमने साथ में गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विसेज जरूर सुनिएगा लाइक अ रेडियो 90s लाइक अ रेडियो पंजाबी लाइक अ गोल्ड 2 कल सुबह आपके मनोरंजन के लिए पहुंच जाएगी सुबह सवेरे 6 बजे हमारी प्यारी काजल जरूर उनका साथ दीजिएगा एंड हमेशा की तरह बस यही कहूंगी जिंदगी बहुत खूबसूरत है प्लीज़ उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं प्यार ओह वी आर ब्लेस्ड विद इट तो प्यार दो और प्यार लो पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए लगता है एंड आई एम श्योर हम में से कोई भी अपने पावर का यूज़ नहीं करता क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग सब हैं म्यूज़िकल फैमिली से तो म्यूज़िक आपको हमेशा एंगेज रखता है एंड आई एम श्योर आप सभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग होंगे तो पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए कल 34 डिग्रीज है तो प्लीज़ घर के अंदर रहिए हाइड्रेटेड रहिए अपना ख्याल रखिए एंड ऑब्वियसली बाहर काफ़ी पोलन ग्रेन्स की चीज़ें अभी हो रही हैं तो कई लोगों को सर्दी खांसी जुकाम जो भी हो रहा है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ कल मनाएंगे आप और हम साथ में थ्रिलिंग थर्सडे आई नो थ्रिलिंग हीट है बाहर लेकिन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर लवली विशेस बाय
11: लाइका गोल्ड This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: is Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 020-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। दैट्स 0208-907-2444।
7: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: as tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
5: आपके सामने एक red button है. नहीं दबाना था.
6: The Madness is back. Dhamaal 4. गुलाबी साड़ी में तू लग रहा. Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamaal 4. Directed by Indra Kumar. गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी. Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
7: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाता.
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208 922 3344 24 hour line.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Evening. How's your night shift going? Just a quick check-in from Acorn Insurance, the taxi specialists. We've been by your side for over 40 years, helping new drivers earn a no-claims bonus from day one and accepting up to 9 years no-claims from veteran cabbies. That's why we're the largest taxi insurance specialist in the UK. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Bye for now. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
6: T's and C's apply.
0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर